अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री रामलला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारों भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः

जय। श्री रमापति रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम।

अर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् सज्जनं यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम महाराज की। संत बड़े परमारथी भेस्तरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाई यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय, श्री राम जय, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

के विशेष प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इस विशेष प्रसारण द्वारा आकाशवाणी से हम आप सभी श्रद्धालुओं का, बाबा के भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपकी सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हुए आज की इस सभा का आरंभ करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज के इस विशेष प्रसारण में मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी साथी उद्घोषक सायका सलीम।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग, और ये आवाज़ जो है आप तक पहुंच रही है एफएम बालटल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा भी हम आपके साथ बने हुए हैं। और आपको बता दें कि छड़ी मुबारक की यात्रा का आज एक जो है नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि छड़ी मुबारक की यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने की व्यवस्थाएं जो हैं उनको विस्तार से समीक्षा की गई है। ये यात्रा 22 अगस्त यानी कि आज श्रीनगर से शुरू होकर रास्ते में कई जगहों पर

रुकते हुए 28 अगस्त को पवित्र गुफा तक पहुंचेगी, यानी कि छड़ी मुबारक की आज एक खास यात्रा जो है शुरू होने जा रही है। और बताया जाता है कि छड़ी मुबारक जो है हमारे, हम ये जानते भी हैं कि कई मंदिरों में धार्मिक समारोह में शामिल होती है, जिनमें बिजबहाड़ा का शिव मंदिर, मार्तंड तीर्थ मंदिर और पहलगाम का गणेश शंकर मंदिर भी जो है शामिल है। और आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर ने इस संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि छड़ी मुबारक की पूरी यात्रा के दौरान सभी जो भी व्यवस्थाएं हैं, ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं और सुविधाएं जो हैं, जैसे जलाव लकड़ी, भोजन, पूजा का सामान, पीने का पानी, रहने की व्यवस्थाएं, रहने की जगह और साफ़ सफाई उपलब्ध रहें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच जो है बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर भी जो है जोर दिया है, और इसकी व्यवस्थाएँ भी हो चुकी हैं। और अधिकारियों को सतर्क रहने तथा पवित्र गुफा तक सभी व्यवस्थाएँ समय से पहले पूरे करने का जो भी जो है निर्देश है, और सभी व्यवस्थाएं जो है बहुत ही, हम ये कहेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से पूरी हो चुकी हैं। और ख़ास बात यह है कि यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तय अधिकारियों को विशेष निर्देश भी जो है जारी किए जा चुके हैं, ताकि ये छड़ी मुबारक की यात्रा जो है बिना किसी बाधा के चलती रहे। और ये यात्रा जो है बहुत ही एक, हम कहेंगे, सुंदर तरह से और सुरक्षित तरह से अपने समापन को पहुंचे।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बता चुके हैं आपको कि आज छड़ी मुबारक का एक बहुत ही ख़ास अध्याय जो है शुरू होने जा रहा है। छड़ी मुबारक भगवान शिव जी का पवित्र, हम ये कहेंगे कि पवित्र एक प्रतीक है, पवित्र चांदी का एक गद्दा है और ये सालाना अमरनाथ जी यात्रा का मुख्य आध्यात्मिक प्रतीक होता है। श्रीनगर के ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से केसरिया वस्त्रों में लिपटे इस गद्दे को ले जाना इस तीर्थ यात्रा का आखिरी और सबसे पवित्र चरण होता है। श्रोताओं, जो श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा मंदिर में जाकर पूरा होता है, महत्व इसका और ये परंपरा जो है पवित्र, ये छड़ी मुबारक चांदी की, ये छड़ी मुबारक भगवान शिव जी के दिव्य का प्रतीक है और जिसे बृंगेश संहिता के अनुसार सुरक्षा के लिए ऋषि बृंगेश को पेंट किया गया था। और हम ये कहें कि इसकी अगुवाई पारंपरिक रूप से पवित्र गद्दे के संरक्षण महंत दीपेंद्र गिरी जी करते हैं और आध्यात्मिकता, हम ये कहें कि इसकी सुरक्षा ये गुफा की ओर जाने वाले साधुओं और भक्तों के आखिरी जत्थे के लिए एक रक्षक और मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। तीर्थ यात्रा का रास्ता और चरण, अगर हम उनकी बात करें तो शुरुआत जो है श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से होती है और वहाँ पर प्रार्थनाएँ और अर्चनाएँ होती हैं और छड़ी स्थापना के साथ यात्रा शुरू होती है। और रास्ते में पूजा की बात करें तो शंकराचार्य मंदिर, हरि पर्वत और पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर जैसे पवित्र मंदिरों में पारंपरिक पूजा अर्चना के लिए रोका जाता है और पारंपरिक पड़ाव जो है चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी जैसे पारंपरिक ट्रांजिट कैंपों से होकर यात्रा जो है गुजरती है। और अगर समापन की बात करें तो समापन श्रावण पूर्णिमा पर पवित्र गुफा में अंतिम पूजा के साथ ये यात्रा जो है पूरी होती है, जो अमरनाथ जी यात्रा के मौसम के आधिकारिक समापन का प्रतीक भी है। श्रोताओं, क्षण क्षण की जानकारी आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे संग।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण के संग। और आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही प्रसन्नता और उत्सव का समय होता है। तीर्थयात्री, श्रद्धालु, साधु संत सभी जो है आशा और नवीनकरण की भावना के साथ स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हाजिर होते हैं और दर्शन का सौभाग्य पाते हैं बहुत ही, और फिर शांति के साथ और संतुष्टि की भावना के साथ प्रसन्न होकर जब बाबा के दर्शन जो उनके पूरे होते हैं फिर अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं। श्रोताओं, ये एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कठिन अवश्य है, लेकिन एक ऐसी यात्रा भी है जो अर्थ और महत्व से भरी है। बाबा के भक्तों को अक्सर कठिन परिस्थितियों उससे गुजरना पड़ता है और फिर पहाड़ों के माध्यम से पद यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि ये यात्रा जो है आध्यात्मिक और आत्मनिरीक्षण और चिंतन का एक अवसर भी है। श्रोताओं, यात्री जो है पवित्र गुफा में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने के साथ साथ वो हिमालय की सुंदरता और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव भी करते हैं और यहाँ के सुहाने से मौसम में जो है हम ये कहेंगे कि इस सुहाने से मौसम का अनुभव करते हुए, आनंद लेते हुए यात्रा को पूर्ण करते हैं। और भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जो बाबा बर्फानी के द्वार पर आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं और फिर जो है प्रसन्नता पूर्वक संतुष्टि के साथ दर्शन से तृप्त होकर अपने अपने घरों, अपने अपने क्षेत्रों की ओर मधुर यादों के साथ लौटते हैं और फिर

मनुष्य बाबा बर्फानी के द्वार पर आने की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। और जो बाबा बर्फानी का दर्शन प्राप्त करने के बाद पवित्रता हम ये कहते हैं कि हासिल होती है, और हम यही कहेंगे, हमारी प्रार्थनाएं यही है, मनोकामनाएं यही है कि आप जिन्होंने भी बाबा भोलेनाथ के द्वार पर हाजिरी दी, दर्शन किए, आप सभी इस अपने जो हाजिरी दी, आप सभी इस पवित्र यात्रा के बाद इस पवित्रता हासिल करने में सक्षम हुए हों।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग, और ये आवाज़ जो है आप तक पहुंच रही है एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा भी जो है आप ये प्रसारण सुन पा रहे हैं।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग, और अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में बारी बारी से समाचार सुनेंगे।
1: गुड मॉर्निंग, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई

0: चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
0: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है, और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी।

0: बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज रिफॉर्म्स आर नॉट कंपल्शन बट अ कमिटमेंट एंड कन्विक्शन फॉर गवर्नमेंट। असर्ट्स इट्स पॉलिसीज आर प्रो पीपल, प्रो ग्रोथ एंड प्रो डेवलपमेंट। Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur declaration focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Wynn this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next-generation reforms at the policy level to secure the country's future.
4: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21

0: attempt, and neither athlete could improve their marks in the remaining rounds. Anderson Peters finished third with 86.69 meters, while Keshawn Walcott took fourth with 83.71 meters. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. Heavy rainfall conditions are also expected to prevail over the northeastern parts of the country, including Assam, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till tomorrow. According to the IMD, similar weather conditions are expected to prevail over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. The Statesman quotes Prime Minister Modi's address at a World Leaders Forum unveiling the next generation roadmap, asserting that India has emerged as a bright spot for global growth. The Asian Age mentions about the Prime Minister urging the CEOs of space startups to find new uses for tech and make lives easier. A top front page headline in Hindustan Times states, biggest El Nino in over a century to dial up global heat and could push 2027 as the hottest year ever recorded globally. Apple and Google are set to deepen their manufacturing presence in India, reports Financial Express. And finally, all the dailies have covered the news of passing away of veteran actress Saukar Janki, the versatile face of Southern cinema at the age of 94. She started as a drama artist in All India Radio and went on to captivate viewers in Tamil, Telugu and Kannad films. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSP for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Win this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है, बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने मगरीब बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजामात और सिक्योरिटी में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। ब्रिक्स के सियाहत के वुज़रा ने पायदार सियाहत, मस्नूई जहानत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर किया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारत की जोड़ी चीन की जोड़ी से मुकाबला करेगी। और हॉकी आलमी कप में आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन के मकाम पर भारत की मर्दों की टीम अपने दूसरे मरहले के मैच में मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सरकारी एतबार से इस्लाहात पर खसूसी तवज्जो देते हुए इस्लाहात के सिलसिले में एक वाज़ह खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के

0: पॉलिसी सतह पर नए दौर की इस्लाहात कर रहा है।
1: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
0: वजीर आजम ने वाजे किया कि उनकी हुकूमत महज जाब्ते तब्दील नहीं कर रही है, बल्कि वो जाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि साबिका हुकूमतों के दौर में लाइसेंस राज ने बेरोजगारी में इजाफा किया था, जबकि उनकी हुकूमत के पैदावार से जुड़े तरगीबी मॉडल नए मौके पैदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने आलमी इक्तसादी माहौलियात के बारे में भी बात की और कहा कि वसाइल को आलायकार बनाना और बढ़ती हुई बदगुमानियां नए चैलेंजेस पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में भी भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शा मकाम के तौर पर देखा जा रहा है।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि बैनुल अक्वामी मालियाती फंड ने पेशगोई की है कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई बड़ी मईशत रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे इकदाम कर रहा है जो उसकी तरक्की को नई जहत दे रहे हैं। मुल्क की सतह पर इस्तेहकाम के गहरे आलमी असरात को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जबरदस्त एतमाद का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की के सफर को महफूज बनाकर बैनुल अक्वामी बिरादरी के लिए फितरी तौर पर ज्यादा इस्तेहकाम लाया जा सकेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इक्तदार में आने के 45 दिन के अंदर रियासत में भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के बाद 1129 एकड़ जमीन बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के हवाले की है। उन्होंने कहा कि सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन की दरख्वास्त 2014 से जेर इल्तवा थी। जनाब शाह कल मगरबी बंगाल की सिलीगुड़ी में रानी दंगा इलाके में सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर दाखिला ने कहा कि खारदार तार लगाने के काम को मुकम्मल करना जरूरी है ताकि दरअंदाजी को रोका जा सके और कौमी सलामती का तहफ्फुज किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गैर कानूनी इमिग्रेशन के तई कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी जारी रहेगी।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। तो तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: ब्रिक्स के सियाहत के वुजरा की मीटिंग जो भारत की सदारत में मुनाकिद हुई थी कल खत्म हो गई। इसमें जयपुर एलामिये को मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई, जिसमें ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तावुन को मुस्तहकम करने के लिए एक फ्रेमवर्क की गुंजाइश फराहम की गई है। एलामिये में सियाहत में मसनूई जहानत के इस्तेमाल, पायदार सियाहत के तौर तरीकों, हुनरमंदी की तरक्की और बिला रुकावट सफर की सहूलत फराहम की गई है। मीटिंग की सदारत राजस्थान के जयपुर में सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और 2026 में भारत की सदारत में ब्रिक्स टूरिज्म ट्रैक इख्तिताम पजीर हुआ। टूरिज्म ट्रैक का मौजू साबित कदमी, इख्तिरा और पायदारी था और इस मौजू को आगे ले जाया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि सियाहत 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत के सफर में एक अहम रोल अदा करेगी और भारत के पास इतनी सलाहियत है कि वो माशी तरक्की को बड़े शहरी मराकज से कस्बों, गांवों और दूरदराज के खित्तों तक लेकर जा सके। ब्रिक्स के सियाहत के वुजरा के एलामिया 2026 को जयपुर एलामिया के तौर पर भी माना जाता है, जो भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स सियाहत वर्किंग ग्रुप के जरिए किए गए काम की अक्कासी करता है और चार अहम तरजीहात पर तवज्जो देता है, जिनमें मसनूई जहानत और सियाहत, पायदारी और जिम्मेदाराना सियाहत, सियाहत हुनरमंदी, सलाहियत साजी और सियाहत के तबादले और बिला रुकावट सफर की सहूलियात शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुजरा की मीटिंग और ब्रिक्स के खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के नौजवानों की उम्र के वुजरा की मीटिंग आज होगी, जबकि खेलों के वुजरा की मीटिंग कल होगी। इन मीटिंगों की सदारत नौजवानों की उम्र के वुजरा और खेलों के वुजरा डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। नौजवानों की उम्र और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खट्टे भी इन मीटिंगों में शिरकत करेंगी। नौजवानों की उम्र खेलों की वजारत के मुताबिक नौजवानों की उम्र के वुजरा की मीटिंग में तालीम हुनरमंदी का

0: रुपए फी किलोग्राम थी, जो जुमेरात के रोज बढ़कर तकरीबन 55 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। वजारत ने कहा है कि चीनी की कीमत में हालिया इजाफे की वजह इथेनॉल की पैदावार के लिए चीनी की मुंतकली को करार देना दुरुस्त नहीं है। और अब अखबारात के आईने के साथ है मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 20 खलाई स्टार्टअप्स के सरबराहों से मुलाकात की खबर को अहमियत दी है। इस मौके पर जनाब मोदी ने भारत को आलमी खलाई टेक्नोलॉजी का अहम मरकज बनाने के लिए जिद्दतराजी और बाहमी तआवुन पर जोर दिया। जापान के वज़ीर दिफा शिंजीरो कोइज़ुमी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के तईं जापान की हुकूमत के मुसलसल अज़्म की तस्दीक की। इस खबर को रोज़ाना प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोज़ाना प्रताप ने भारतीय वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि भारत और सिंगापुर के दरमियान चौथी वजारती गोलमेज मीटिंग सिंगापुर में हुई, जिसमें फरीकैन के वज़ारा ने आला दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग कनेक्टिविटी, सेहत और तिब हुनरमंदी के फरोग और पायदारी जैसे शोबों में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की पेशरफ का जायजा लिया।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देख हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर BSF और SSB को 1129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सिक्योरिटी में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा किया है। और ब्रिक्स के सियाहत के वज़रा ने पायदार सियाहत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ये प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी सुन पा रहे हैं।

वृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि अब पवित्र यात्रा जो है, इसमें छड़ी मुबारक की यात्रा जो है, आज से एक खास इसका अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो महंत दीपेंद्र गिरी जी के आचरण में अन्य साधु संतों के साथ शुरू होने जा रही है, जिसका कार्यक्रम जो है हम आपको बताते रहते हैं। और वो पारंपरिक यात्रा जो है आज से शुरू होगी, और हम आपको बता दें कि आज यानी 22 और 23 अगस्त की रात को पहलगाम में इस छड़ी मुबारक का विश्राम रहेगा, और 24 अगस्त चंदनवाड़ी में रात्रि विश्राम इसका रहेगा, और 25 अगस्त शेषनाग में रात्रि विश्राम के लिए पूजा अर्चनाओं के बाद ये जो है वहाँ पे इसको रोका जाएगा, और 26 और 27 की रात यानी 24 और 27 अगस्त की रात पंचतरणी में रात्रि विश्राम के लिए छड़ी मुबारक को रखा जाएगा, और 28 अगस्त इस पवित्र गुफा में दर्शन और इसका समापन होगा। आपको बता दें कि पहलगाम में रात्रि विश्राम छड़ी मुबारक का जो है पारंपरिक पहलगाम मार्ग से ही आगे बढ़ेगी, और 28 अगस्त को यानी कि 28 अगस्त 2026 को इस साल की यानी 2026 की ये यात्रा का जो है औपचारिक समापन होगा, और पवित्र छड़ी मुबारक जो है श्रीनगर के दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी जी की देखरेख में है, और साधुओं और उनके साथ आने वाले तीर्थयात्रियों और दूसरे साधु संतों की सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं जो है यूटी प्रशासन के साथ मिलकर की जा चुकी हैं, और श्रद्धालुओं को भी जो है सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए समय समय पर जारी सभी आधिकारिक सलाहों का पालन करें।

शास्त्रोक्त विधि पूर्वक रुद्र पूजन के पश्चात रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक वेद मंत्रों से मंडित

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। श्रोताओं आपको बता दें कि कश्मीर जो है हमेशा से ही देवी देवताओं का निवास स्थान रहा है। इनमें हम ये बता दें कि सबसे पवित्र और प्रसिद्ध जगह जो है वो है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा, जो समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट से ज़्यादा जो है कि ऊंचाई पर स्थित है। ये कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर है। श्रोताओं आपको बता दें कि इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत के बारे में जो संस्कृत की किताब ब्रिंगेश संहिता में बताया गया है कि इसमें लिखा गया है कि ऋषि ब्रिंगेश ने अपने शिष्यों को अमरनाथ जी गुफा का महत्व बताया और उन्हें पवित्र गुफा में जाकर पवित्र बर्फ लिंग के दर्शन करने का निर्देश दिया। हालांकि तीर्थयात्रियों को राक्षसों ने जो है परेशान किया उस यात्रा के दौरान, और तब ऋषि ब्रिंगेश ने भगवान शिवजी से प्रार्थना की कि भगवान शिवजी ने जो है ऋषि को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक छड़ी भेंट की, और तब से ये तीर्थयात्रियों के जत्थे के लिए सुरक्षा का प्रतीक जो है माना जाता है और प्रतीक रही है, और अब इसे छड़ी मुबारक के तौर पर जाना जाता है। हालांकि पारंपरिक यात्रा जो है आम तौर पर ये हर साल रक्षाबंधन पूर्णिमा यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते के आसपास पर गुफा तक पहुंचती है, और छड़ी मुबारक के साथ जो है बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और साधु संत रहते हैं, और वो ये सारे तीर्थयात्री श्रद्धालु और साधु संत जो है मंत्रों का जाप करते हुए चलते हैं और यूं इस छड़ी मुबारक को जो है पवित्र गुफा तक पहुंचाते हैं, जहां पर इसकी लदर जो है नदी के किनारे इसकी पूजा अर्चना होती है, और फिर जाके इस छड़ी मुबारक का जो है विसर्जन होता है और यूं इस पवित्र यात्रा का जो है समापन हो जाता है।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और अब से बस कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाचार सुनेंगे। समाचार के लिए बस जरा सी प्रतीक्षा करें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत की बदलती हुई रोजगार की उमंगों को उजागर करते हुए कहा कि एक खुद इन्हसार जम्मू कश्मीर का मतलब एक ऐसा खिता है जहां हर नौजवान शहरी अपनी लियाकत और काबिलियत के मुताबिक किसी न किसी सूरत में रोजगार देने वाला बन सके। जरिए यूनिवर्सिटी जम्मू में JKCIP के तहत एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम का इफ्ताह करते हुए उन्होंने कहा कि जरिए सेक्टर नौजवानों की कारोबारी सरगर्मियों के लिए एक बड़ा मैदान है। मनोज सिन्हा ने ताहम कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी इनकलाब खवातीन की शिरकत के बगैर नामुकम्मल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर का आज का नौजवान लाइन में खड़ा रह के रोजगार ढूंढने के बजाय दूसरों के लिए मौके पैदा करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: जम्मू कश्मीर का युवा अब केवल नौकरी की कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता, अब उसे दूसरों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए आगे आना होगा। और बहुत सारे युवा आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की धरती ने सदियों से ज्ञान, संस्कृति, साहस और सृजन की परंपराओं को जन्म दिया है। अब वक्त आ गया है कि नौजवान इन परंपराओं को नई ऊर्जा, नई तकनीक और नई उद्यमशीलता से जोड़ने का काम करें।
0: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कचरे को दोबारा इस्तेमाल में लाने की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि लोगों को बाजार से कुछ खरीदते वक्त दुकानदारों से प्लास्टिक की नई थैलियां लेने के बजाय घर से ही बार बार इस्तेमाल होने वाली थैलियां साथ लेने की आदत अपनानी चाहिए। श्रीनगर में महकमा फ्लोरिकल्चर की तरफ से कायम करदा वेस्ट वंडर गार्डन का इफ्ताह करने के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बाग इस तखील को तकवीत बख्शता है कि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले ऐसा जरूर सोचा जाए कि इस मटीरियल को कैसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए।
2: किसी भी चीज को जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कि आपकी वो सोच हो। यहाँ पे अगर आप घूम के देखें तो आपको अजीब अजीब चीजें दिखेंगी जिनका आप अंदाजा नहीं कर सकते थे कि उनको किसी बाग में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आजकल हम सबने देखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा मसला हमारे शहरों में भी और देहात में बना हुआ है। लेकिन अगर कहीं रीसाइक्लिंग और रीयूज की गुंजाइश है, यही इस बाग के पीछे मकसद है।
0: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के उसूल पर कायम करते इस बाग के इफ्ताह के मौके पर वज़ीर आला के मुंशी नासिर असलमानी और महकमा फ्लोरिकल्चर की डायरेक्टर मथुरा मासूम भी मौजूद थीं। प्रसार भारती के मेंबर पर्सनल राजीव भारद्वाज ने श्रीनगर का दौरा करके आकाशवाणी श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के कामकाज और मुलाजमीन को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने आकाशवाणी श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में दो अलग अलग मीटिंगें करके उन दो मीडिया इकाइयों के कामकाज में बेहतरी लाने से मुतालिक उमूर पर अफसरों के साथ सैर हासिल तबादला ख्याल किया। मेंबर पर्सनल ने मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। माहौलियात से मुतालिक कानून साज असम्बली की कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की तमाम आबी पनागाहों के इंतजाम और उनके तहफ्फुज से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। यह मीटिंग असम्बली कम्प्लेक्स श्रीनगर में चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ तारीगामी की सदारत में मुनाकिद हुई, जिस दौरान दीगर आबी गाहों के अलावा होकर सर मानसबल, वल्लर, निगेन, मानसर और सुरनसर जैसी झीलों के तहफ़ाती इकदाम के लिए सांसी तौर तरीका और लोगों की शिरकत यकीनी बनाने की जरूरत उजागर की गई। दरियासा अर्जदाशतों से मुतालिक असम्बली की कमेटी की एक मीटिंग चेयरमैन पीरजादा फारूक अहमद शाह की सदारत में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान खिम्बर हजरतबल के अवाम की इस देरीना शिकायत का जायजा लिया गया जो उनके इलाके में गाह चराई पर जमाए गए नाजायज कब्जे से मुतालिक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस्लाहत कोई मजबूरी नहीं है बल्कि उनकी सरकार की पॉलिसियों को अवाम दोस्त और तरक्की के मौके बनाने के लिए ज़रूरी है। कौमी राजधानी नई दिल्ली में आलमी लीडरों के फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने ज़मीनी सतह पर इस्लाहत पर बुनियादी तवज्जो मरकोज करते हुए बड़े इस्लाहत के लिए एक वाज़ह नक्शेरा सामने रखा है। गांधरबल जिले के तुलमला में आज हजरत मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वहां रात भर के दौरान मुतअद्दिद अकीदतमंदों ने शबेदारी करके जम्मू कश्मीर और मुल्क में कयाम अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की। भारतीय रेलवे ने एक अहम पेशरफ्त के तहत जम्मू और श्रीनगर के दरमियान उधमपुर से होते हुए तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हवाले से रेलवे के वजीर अश्नवी वैष्णव का एक खत शेयर किया है जिसमें इस मनसूबे की मंजूरी की जानकारी दी गई। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।
3: अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और ये विशेष प्रसारण जो है FM बालटल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, TTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी जो है आप सुन पा रहे हैं।

श्रोताओ, अब आपको पवित्र गुफा का जो है विवरण देते हैं कि ये पवित्र गुफा जो है काफ़ी बड़ी है। इसका प्रवेश द्वार क्षितिज रूप से लगभग 40 गज चौड़ा और ऊंचाई में लगभग 75 फीट है। ये पहाड़ के अंदर 80 फीट की गहराई तक ढलान वाली है और गुफा के भीतर बर्फ का लगभग 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसको शीर्ष पर शंकु यानी हम ये कहेंगे कि कोन जैसी आकृति जिसकी बनती है, और ये स्पष्ट रूप से भगवान शिव जी का प्रतीक है। शिवलिंग के बाई और बर्फ का एक छोटा सा जो स्तंभ है जो भगवान गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके बाई और बर्फ की एक और छोटी आकृति है जो देवी पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। बर्फ की ये आकृतियाँ गर्मियों के दिनों में बनती हैं और चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती रहती हैं। पूर्णिमा के दिन इनका आकार जो है पूर्ण होता है, जबकि अमावस्या के दिनों में ये पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण के संग। और अब बात करते हैं पवित्र गुफा के महत्व के बारे में। श्रोताओं आपको बता दें कि ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध श्लोक है एकम सत, जिसका अर्थ है ईश्वर एक ही है, जिसे ऋषि मुनि अनेक नामों से पुकारते हैं। परमेश्वर के तीन रूप हैं जो संसार का संचालन करते हैं, इसे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी कि जीवन के संरक्षण, और शिव महेश यानी पवित्र करने वाले, अच्छाई को बनाए रखने वाले और बुराई का विनाश करने वाले। ऋग्वेद में शिवजी को रुद्र कहा गया है, जैसा कि श्लोक में बताया गया है कि हम त्रियंबक यानी रुद्र की पूजा करते हैं जो सुगंध फैलाते हैं और पोषण बढ़ाते हैं। वे मुझे नश्वर, जी हाँ, वे मुझे, हम ये बता दें कि इसमें बताया गया है कि वे मुझे नश्वर जीवन से वैसे ही मुक्त करें जैसे खीरा अपनी बेल से अलग हो जाता है लेकिन अमृता से नहीं। यजुर्वेद में शिवजी का वर्णन एक तपस्वी योद्धा के रूप में किया गया है जिन्होंने हिरण की खाल पहनी है और जिनके हाथ में त्रिशूल है। सत्यम शिवम सुंदरम श्लोक के अनुसार जीवन के तीन पहलू बताए गए हैं, सत्य यानि सत्यम, कल्याणकारी यानि शिवम, और सुंदर यानि सुंदरम। अच्छे कर्म करने की आंतरिक शक्ति पाने के लिए भी शिवजी की पूजा की जाती है, जैसा कि गुरु गोविंद जी सिंह ने जो प्रार्थना की है वो कहते हैं उस प्रार्थना में कि हे शिवजी मुझे ये वरदान दें कि मैं कभी भी अच्छे कर्मों से पीछे ना हटूं, बुराई से लड़ते समय कभी ना डरूं और निश्चिंत रूप से विजय प्राप्त करूँ। श्रोताओं शिवजी एक जीवंत देवता है। भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में उनके अस्तित्व का वर्णन भजनों में मिलता है। वैदिक कथाएं, अनुष्ठान और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान भी समय की शुरुआत से ही उनके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोजें प्राचीन भारत में शिवजी की पूजा की पुष्टि करती हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार उनके निवास के तीन स्थान हैं, एक है कैलाश पर्वत, दूसरा है लोहित गिरी जिसके नीचे से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और तीसरा है मुजवान पर्वत।

जी श्रोताओं, बात हो रही है पवित्र गुफा के महत्व के बारे में। अब आपको बता दें कि अमरनाथ जी गुफा का जो है बहुत ही ख़ास महत्व है। इसी गुफा में भोले शंकर जी ने माता पार्वती को अमृता और ब्रह्मांड की रचना के रहस्य सुनाए थे। ये कहानी कुछ इस तरह है कि सदियों पहले माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि उन्होंने सिरों की माला यानी कि मुंड माला पहनना कब से शुरू किया और क्यों शुरू किया। भोले शंकर जी ने जवाब दिया कि जब भी तुम्हारा जन्म होता है मैं अपनी माला में एक और सिर जोड़ देता हूँ। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर हर बार नष्ट हो जाता है और मैं बार बार मरती हूँ, लेकिन आप अमर हैं, कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। भोले शंकर जी ने जवाब दिया कि ये अमर कथा की वजह से है। माता पार्वती ने जिद की कि उन्हें वो रहस्य बताया जाए और फिर शिव जी काफ़ी समय तक उन्हें टालते रहे। आखिरकार माता पार्वती की लगातार मांग पर उन्होंने अमृता का रहस्य बताने का मन बना लिया। वे एक ऐसी सुनसान जगह की ओर चल पड़े जहां कोई भी जीव जंतु उनकी बात न सुन सके। उन्होंने अमर कथा गुफा को, हम ये कहें कि अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा को चुना। इस यात्रा की तैयारी में उन्होंने अपने वाहन यानि नंदी जो और पहलगाम यानि बैलगांव में छोड़ दिया। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग झील के किनारे उन्होंने सांपों को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश जी को महागुनस पर्वत यानी महागणेश पहाड़ी पर छोड़ने का निर्णय लिया। पंचतरणी में शिवजी ने उन पांच तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पीछे छोड़ दिया, जिनसे जीवों का निर्माण होता है। वे इन तत्वों के स्वामी हैं। माना जाता है कि सांसारिक दुनिया का त्याग करने के प्रतीक के रूप में शिवजी और माता पार्वती ने तांडव नृत्य किया था। इन सबको पीछे छोड़ने के बाद भोले शंकर जी ने माता पार्वती के साथ पवित्र अमरनाथ जी गुफा में प्रवेश करते हुए ये जो है कि प्रवेश किया और भगवान शिव जी ने हिरण की खाल पर बैठकर समाधि वो वहाँ पर लेते हैं और ध्यान मगन हो जाते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जीव अमर कथा न सुन सके, उन्होंने कलग्नी नामक रुद्र को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि वे पवित्र गुफा के अंदर और आसपास मौजूद हर जीव को खत्म करने के लिए आग फैला दें। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताना शुरू किया, लेकिन संयोग से हिरण की खाल के नीचे पड़ा एक अंडा सुरक्षित बच गया। माना जाता

है कि वो निर्जीव था और साथ ही वे शिव जी और पार्वती जी के आसन यानी कि बिस्तर से सुरक्षित था। इस अंडे से निकले कबूतरों का जोड़ा अमृता का रहस्य यानी अमर कथा सुनकर अमर हो गया। कई तीर्थयात्री बर्फ के शिवलिंग यानी शिव जी के प्रतीक के दर्शन के लिए कठिन रास्ते पर चलते समय इन कबूतरों के उस जोड़े को देखने की बात भी करते हैं।

श्रोताओ सुन रहे हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण, जो कि आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर।

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कई बार आपसे कह भी चुके हैं कि आज जो है छड़ी मुबारक का एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जो है शुरू आज से हो चुका है। और श्रीनगर में छड़ी मुबारक की पूजा जो है दशनामी अखाड़े में स्थित शिव मंदिर में पवित्र अमरनाथ जी गुफा के लिए जाने वाली छड़ी मुबारक की पूजा हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच जो है हो जाती है। और सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार अमरनाथ जी गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इस पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा सबसे पहले शंकराचार्य मंदिर में की गई, जो हमेशा से होती आई है। और इस रस्म के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महंतों और साधु संतों के साथ शामिल जो है हो जाते हैं। और पहलगाम की ओर बढ़ने से पहले शारिका देवी मंदिर में भी एक समारोह जो है आयोजित किया जाता है। छड़ी मुबारक अमरनाथ जी यात्रा का कार्यक्रम जो है पारंपरिक अमरनाथ जी यात्रा में छड़ी मुबारक का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। और ये यात्रा पारंपरिक रूप से पवित्र छड़ी मुबारक की शुरुआती पूजा से जुड़ी है, जिसे बाद में आगे की रस्मों के लिए कश्मीर के कई मंदिरों में जो है ले जाया जाता है। आज की बात करें, यानी आज 22 अगस्त है, आज के दिन जो है छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पहलगाम के लिए निकलती है और कश्मीर के कई मंदिरों से होकर गुजरती है। और 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में लदर नदी के किनारे जो है रस्में इसकी निभाई जाती हैं, और रात के विश्राम के लिए वही रुकती है। और वही 24 अगस्त छड़ी मुबारक चंदनवाड़ी पहुँचती है। 25 अगस्त ये जत्था जो है शेषनाग पहुंचता है। और 26 और 27 अगस्त को छड़ी मुबारक पंचतरणी में रुकती है। और वहीं पर हम ये कहें कि पवित्र छड़ी अंतिम पूजा के लिए अमरनाथ जी गुफा पहुंचती है, और फिर पहलगाम में रुकने के साथ साथ वापसी की यात्रा भी जो है शुरू हो जाती है। और फिर लदर नदी के किनारे अंतिम पूजा और अर्चनाओं के बाद इसका विसर्जन होता है।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अगस्त से श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है किसी तरह से रुक गई थी और इस साल की 57 दिनों की अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा के दौरान जो है 4,67,000 श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। हालांकि ख़राब मौसम की वजह से 8 अगस्त को ये यात्रा जो है रोकनी पड़ी और बारिश से ख़राब हुए रास्तों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। यात्रा रुकी होने के बावजूद महंत, हम ये कहें आपको कि दीपिंदर गिरी जी के देखरेख में पारंपरिक छड़ी मुबारक का जुलूस जो है, जो जत्था जो है आज यानी 22 अगस्त को श्रीनगर से पहलगाम होते हुए पवित्र गुफा तक जो है ले जाया जा रहा है। आखिरी रस्मों के बाद छड़ी मुबारक वापस लौटेगी और 28 अगस्त को अमरनाथ जी गुफा में आखिरी रस्में पूरी होने के बाद छड़ी मुबारक अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेगी। ये जत्था जो है 28 अगस्त को पंचतरणी में रुकेगा और 29 अगस्त को पहलगाम पहुंचेगा। 30 अगस्त को लतेर नदी के किनारे पूजा और विसर्जन किया जाएगा, जिसके बाद संतों के लिए बोझ होगा। इन रस्मों के साथ जो है सालाना छड़ी मुबारक यात्रा पूरी होगी, जिसके बाद पवित्र छड़ी मुबारक जो है श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा मंदिर में वापस आएगी और अगले साल तक जो है वही रहेगी। हम आपको ये बता दें कि आज जो है इस छड़ी मुबारक की एक नई यात्रा जो है शुरू हो चुकी है और ये श्रीनगर से होते हुए पहुँचेगी पहलगाम, और जहाँ पर इसकी फिर जो है अंतिम, हम ये कहेंगे कि अंतिम पूजा अर्चनाएँ होंगी और फिर वहीं से विसर्जन होगा। और इस तरह से इस सालाना वार्षिक यात्रा का जो है समापन होगा।

श्रोता, आपको बता दें कि महंत दीपेंद्र गिरी जी ने छड़ी मुबारक की रस्मों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है आज उन्होंने पूजा और अभिषेक किया और श्रावण शुक्ल पक्ष की अमावस्या और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो है, और उन्होंने कहा कि सारिका भवानी जो है वो गए और पारंपरिक पूजा की। इसके बाद नाग पंचमी के दिन हर साल की तरह पारंपरिक रूप में मुख्य पूजा की गई और फिर 22 और 23 अगस्त यानी आज और कल को पड़ने वाली एकादशी, और हम ये कहें कि एकादशी को श्रोताओं को के दौरान जो है पहलगाम में ये रुकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 24 अगस्त की रात जो है चंदनवाड़ी में रुकेंगे और 25 अगस्त को शेषनाग में, और इस साल तारीखों में थोड़ा सा बदलाव होने के कारण जो है आमतौर पर एक रात के बजाय दो रात यानी 26 और 27 अगस्त पंचतरणी में जो है इसका छड़ी मुबारक का विश्राम होगा। और महंत दीपेंद्र गिरी जी ने आगे ये भी कहा है कि पूर्णिमा के दिन जो इस साल 28 अगस्त को है, छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में ले जाएंगे जहां भगवान शिव जी जो है आज भी बर्फ के लिंगम के रूप में विराजमान है, और हम

ये वैदिक मंत्रों के साथ, उन्होंने कहा है कि वैदिक मंत्रों के साथ जो है पारंपरिक पूजा होगी, और उस पूजा के बाद 28 अगस्त की रात को वापस पंचतरणी में जो है इसका विश्राम होगा। और फिर 29 अगस्त की रात को सुबह जल्दी यात्रा जो है शुरू होगी, और पहलगाम में रात का विश्राम होगा, रात का पड़ाव डालेंगे, और फिर वहीं 30 अगस्त की सुबह लिदिर नदी के किनारे पूजा और विसर्जन होगा, और संतों के लिए बोझ होगा, और इसी के साथ जो है भगवान अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक की वार्षिक तीर्थ यात्रा जो है संपन्न होगी।

0: सभी श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और अभी जो है फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू। जी इमरान, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से छड़ी मुबारक का एक नया अध्याय जो है शुरू हो चुका है, छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा जो है शुरू हो चुकी है महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में, तो क्या कुछ ताज़ा जानकारी है आपके पास इस छड़ी मुबारक की यात्रा को लेकर जो आप यहाँ पर श्रोताओं के साथ जो है साझा करना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, देखिए भगवान शिव जी की मुकद्दस छड़ी मुबारक आज श्रीनगर के दशनमी अखाड़ा से पहलगाम की तरफ रवाना हुई है और ये तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर का सफर तय करेगी और रास्ते में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और रवानगी से पहले यहाँ दशनमी अखाड़ा श्रीनगर में नाग पंचमी के मौके पर रिवायती छड़ी पूजन की गई और मजहबी रसूमात के बाद जो इस छड़ी मुबारक के महाफिज है महंत दीपेंद्र गिरी जी, उन्होंने मुकद्दस छड़ी लेकर सालाना यात्रा वो इस एनुअल पिलग्रिमेज यात्रा पर रवाना हुए हैं। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो ये मुकद्दस छड़ी और यात्रियों का प्रोग्राम जो है आज जो शुरू हो रहा है, इसमें 22 और 23 अगस्त यानी आज रात पहलगाम में हाल्ट होगी, इसी तरीके से 24 चंदनवाड़ी में, 25 अगस्त को शेषनाग में, 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में, और 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के मौके पर मुकद्दस अमरनाथ गुफा में, और 28 अगस्त को छड़ी मुबारक को अमरनाथ

0: की मुकद्दस जो गुफा है उसके अंदर लिया जाएगा, जहां खुसूसी पूजा और दर्शन होगी। और ये काफी सदियों पुरानी मजहबी रिवायत है और हर साल जो कि हम जानते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा के दौरान इसे इंतहाई अहम मजहबी रस्म के तौर पर अदा किया जाता है। तो यहाँ आज श्रीनगर में जैसे मैंने कहा कि दशमी अखाड़ा में बड़ी तादाद यहाँ पर साधु साध्वीज और कश्मीरी पंडित और दीगर लोगों की थी, और बड़ी तादाद में जहाँ इस छड़ी मुबारक के महाफिज महाजपिंद्र गिरी जी ने इसको रवाना किया है, और सुबह यहाँ पूजा भी हुई है जो कि नाग पंचमी के मौके पर ही यहाँ पर रिवायती छड़ी पूजन जिसे कहा जाता है वो भी की गई। और अब ये यहाँ से रवाना हो चुकी है और मीडिया से जितेंद्र गिरी ने बाद में बात भी की है, कई सारे सवाल भी उन्होंने की उनसे पूछने गए, और उन्होंने काफी खुशी का इजहार किया कि जो इंतजामिया की तरफ से या जो यहाँ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए थे या जो अरेंजमेंट्स किए गए थे उन्होंने उसकी काफी तारीफ की, और उम्मीद ये जाहिर की कि इस साल जो इस यात्रा के दौरान यात्रियों ने यात्रा की है, जो जिन्होंने मुल्क के लिए, दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो दुआएं मांगी है, अमन की, खुशहाली की, मोहब्बत की, भाईचारे की, वो दुआएं रंग लाए, वो दुआएं कबूल हो जाए। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जो आज से मुकद्दस गार का इस छड़ी मुबारक का सफर शुरू हुआ है, ये भी इसी पुरअमन तरीके से अपने इस जगह पर पहुंचे, यानी कि अमरनाथ जी गुफा तक
1: जी।
0: और ये जब यहाँ से निकली तो बम बम बोले के नारों के बीच में इसे रवाना किया गया, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर और साथ साथ पुलिस की बाहरी नफरी तैनात थी, सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग तैनात थे ताकि किसी तरह का कोई मुश्किलात या कोई सख्ती पेश ना आए। तो मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि इस साल भी अमरनाथ जी यात्रा इंतहाई पुरअमन तरीके से जो है शुरू हुई, और लगभग 5 लाख अमरनाथ जी यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे सब लोग जानते हैं कि इस साल जो मौसम ने डिस्ट्रप्शन की, जिसकी वजह से ट्रैक्स जो है वो डैमेज हुए और उनकी रिपेयरमेंट को लेके फिर यात्रा को बीच में सस्पेंड भी करना पड़ा, लेकिन छड़ी मुबारक आज से जो है रवाना हुई है। तो उम्मीद है कि इसी पुरअमन तरीके से ये अमरनाथ जी गुफा तक पहुंचे, और जैसे मैंने शेड्यूल भी बता दिया है कि आज और कल की रात पहलगाम में ये
1: विश्राम करेगी आज जी
0: जी जी, और 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग, 26 और 27 अगस्त की रात पंचतरणी, और 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के मौके पर मुकद्दस अमरनाथ गुफा। और जैसे 28 अगस्त को हम जानते हैं कि 28 अगस्त को छड़ी मुबारक को अमरनाथ जी की मुकद्दस गुफा के अंदर लिया जाएगा, जहाँ खुसूसी पूजा और दर्शन होंगे।
1: जी इमरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष विवरण के लिए। जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता, श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायक को, जिन्होंने बताया कि छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा जो है शुरू हो चुकी है, और जिसकी अध्यक्षता महंत दीपेंद्र गिरी जी कर रहे हैं, और ये छड़ी मुबारक की यात्रा जो है आज पहलगाम पहुंचेगी, जहां पर एक रात्रि का विश्राम जो है वहां पर होगा, और काफ़ी सारी हम ये कहेंगे कि व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, सभी को जो भी इससे जुड़े अध्यक्ष हैं तो उनको जो है निर्देश दिए गए हैं कि ये यात्रा जो है जिस तरह से आज तक जो है बहुत ही सुखद माहौल में, सुरक्षित माहौल में चलती रही, आगे भी जो है अपने अंत तक जो है ये यात्रा इसी तरह से सुखद और सुरक्षित माहौल में चलती रहे। और बने रहिए क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हमारे संग।

0: श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आकाशवाणी के संग। और अब जो है हमारे संग जुड़ चुके हैं पहलगाम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता एस तारिक। तो जी तारिक साहब, हेलो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सायका जी, बहुत शुक्रिया
0: जी तारिक साहब। चूंकि हम सब जानते हैं कि पवित्र छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा जो है आज से पहलगाम की ओर जाएगी, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मौसम कैसा है और कैसी उत्सुकता है?
1: बहुत शुक्रिया सायका जी। पहले इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा सलाम। तो 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज 6 दिन शेष रह गए हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई ये पावन यात्रा अब अपने अंतम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है
0: जी।
1: तो मौसम की बात करें तो पहलगाम से श्री अमरनाथ जी गोकाक तक यात्रा मार्ग पर आज मौसम आमतौर पर अबरालू रहने की संभावना है, जबकि अभी इस वक्त पहलगाम की जो स्थिति मैं बता दूंगा मौसम की, तो बिल्कुल खुशगवार मौसम है। अभी धूप निकल आई है,
0: अपने
1: मुकाम पर रुक रुक कर हल्की सी दरमियाना बारिश और दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश होने की जो संभावना वो दर्शाई गई है। तो पहलगाम के निचले इलाकों में दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री से 23 डिग्री के आसपास, जबकि पवन गुफा के नजदीक कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो पहलगाम और चंद्रवारी के निचले यात्रा मार्ग पर आकाश जुजवी तौर पे अबरालू लेकर आमतौर पर रह सकता है। यहाँ दर्जे हरारत 13 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की संभावना है। तो वहां भी दोपहर के बाद कुछ मुकाम पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं शिशनाग, पंचतरणी और पवन गुफा से लगते ऊंचे इलाकों में भी सुबह के वक्त कोहरा छाया हुआ था और बाद में आकाश की ज्यादातर उबराल रहने का इम्कान है। इस वक्त जो हमें इतना मिली है कि वहाँ इस वक्त बिल्कुल धूप निकली हुई है। इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना 35 से 50% तक है, जबकि तेज हवाओं की सबब सर्दी में भी इजाफा हो सकता है। ऊंचाई की सबब सर्दी में इजाफा हो सकता है और ऊंचाई वाले इलाकों में दिन के वक्त दर्जे हरारत 9 से 13 डिग्री सेल्सियस और रात के वक्त गुफा के नजदीक 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो मौसम हालात के पेश नजर आप सब जानते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों मार्गों पर 9 अगस्त से आरजी तौर पे मुलतवी है। अलबत्त आज सुबह अली सुबह दिशा मकारा इस्लामी अकारा श्रीनगर से साधु संतों और भक्तों के साथ छड़ी मुबारक के कस्टोडियन श्री महत निबंधरा गिरी की क्यादत में छड़ी मुबारक संघ हिफाजती इंतजाम के दरमियान पहलगाम की जानिब रवाना हुई है। छड़ी मुबारक का ये पवन जत्था पहले पांपोर, अवंतीपोरा, बिजबारा और अंतनाग से गुजरता हुआ मशहूर सूर्य मंदिर

0: पहुंचेगा। मेरे मंदिर मटन में कुछ उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। अभी लगता है मुझे आधे घंटे के बाद वो मटन पहुंचेगा। मैं भी मटन में इस वक्त मौजूद हूँ। मटन के सूर्य मंदिर में मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त काफी चहल पहल है। तो मुस्लिम सिख समाज के सभी बड़ी मुबारक इस्तेमाल के लिए बड़े तादाद में पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके में एक जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी मुबारक की यात्रा के पेश नजर जिला इंतजामिया और ये सब हिफाजती इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ मकाम पर हिफाजती दस्तों के जवान और पुलिस अहलकार तैनात है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से भी तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। बड़ी मुबारक का काफिला अभी 12 बजे तक सूर्य मंदिर मटन पहुँचने वाला है और ये तवक्का है यहाँ पूजा अर्चना भजन और कीर्तन का प्रोग्राम होगा। भक्तों में प्रसाद तकसीम किया जाएगा। इसके बाद दोपहर का भोजन करके बाद में छड़ी मुबारक का जो काफिला है पहलगाम की जानिब रवाना होगा। पहलगाम पहुंचने के बाद छड़ी मुबारक गौरी शंकर मंदिर पहलगाम में 2 दिन तक पूजा अर्चना में शामिल रहेंगे। 22 और 23 अगस्त की रातें यही गुजारेंगे पहलगाम में। इसके बाद 24 अगस्त को चंदनवारी, 25 अगस्त को शीशनाग, जबकि 26-27 अगस्त को पंचतरणी में रात का पड़ा होगा। आखिरकार 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के पवन दिन श्री मुबारक श्री अमरनाथ के पवन गुफा पहुंचेगी, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक मंत्रों आचरण के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का रिवायती संपन्न होगा। जी
1: हाँ जी, तारिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष विवरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता एस तारिक पहलगाम से, जिन्होंने कहा कि कितनी उत्सुकता है दूसरे धर्म के लोगों में भी कि जो इस छड़ी मुबारक का जो है इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे इसका स्वागत करने के लिए। और मौसम भी जो है हम ये कहेंगे कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल चुकी है, ठंडा हो चुका है और अच्छा सा मौसम है। और इस अच्छे से मौसम में, सुहाने से मौसम में छड़ी मुबारक की यात्रा जो है श्रीनगर के अखाड़ा में स्थित मंदिर से जो है निकल चुकी है पूजा अर्चनाओं के बाद, और अभी जयकारों के साथ, बाबा भोलेनाथ के नाम के जयकारों के साथ जो है ये यात्रा आगे बढ़ रही है और 12 बजे तक जो है सूर्य मंदिर मटन पहुंचेगी और वहां पर इसका बहुत ही जो है स्वागत होने वाला है, क्योंकि सभी जो है इस छड़ी मुबारक का वहां पे जो है स्वागत करने के लिए जो है रेडी है। और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है और सुहाने से मौसम में और बहुत ही हम ये कहेंगे कि अच्छे माहौल में जो है ये और ख़ास व्यवस्थाओं के साथ जो है ये यात्रा जो है शुरू भी हो चुकी थी और अब जो है ये यात्रा समापन की और भी बहुत ही जो है अच्छी कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, बाकी व्यवस्थाएं भी जो है काफ़ी अच्छी की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के बीच ये यात्रा जो है संपन्न भी होने जा रही है।

श्रोताओं, भगवान शिव जी का पवित्र प्रतीक छड़ी मुबारक आज श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा मंदिर से रवाना हुआ और श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की ओर अपनी पारंपरिक यात्रा शुरू की। और निकलने से पहले यानी कि रवानगी से पहले नाग पंचमी के मौके पर दशनामी अखाड़ा मंदिर में पारंपरिक छड़ी पूजन किया गया और पूजा अर्चना के बाद महंत दीपिंदर गिरी जी के नेतृत्व में जो है पवित्र छड़ी मुबारक को जो है उन्होंने संभाला और तीर्थ यात्रा जो है कुछ यूं शुरू हुई।

हर शंकर भगवान की जय। हर काशी विश्वनाथ।

0: महादेव
1: हर हर
0: महादेव
1: हर हर
0: महादेव
1: हर हर
0: महादेव महादेव महादेव

0: श्रोताओं सुन रहे हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। और आज का प्रसारण जो है कुछ ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आज से छड़ी मुबारक का जो है एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। और महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में जो है आज छड़ी मुबारक की रस्में जो है पूजा अर्चना के बाद जो है ये इसकी जो है आज यात्रा शुरू हो चुकी है श्रीनगर से पहलगाम की ओर। तो उनसे की गई बात जो है आप और हम सुनते हैं मिलजुल के।
1: महंत जी, आज के दिन के बारे में बताइए।
2: जी, आज जैसा हम जान, आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और हम महादेव ब्रह्मलीन महादेव बिंदी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा के शिव और शक्ति स्वरूप ने शटिकाओं, जो प्रचलित नाम से छड़ी मुबारक है, उसको लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो रात्रि पड़ाव हुआ करते थे बमपुर बीच पहाड़ा गौतम नाग होते हुए अनंतनाग रात्रि पड़ाव होता था, उसके पश्चात मार्तंड के बाद ऐशमकाम के बाद पहलगाम। तो इन स्थानों पर पहलगाम से पहले आने वाले पड़ाव जो रात्रि हुआ करते थे, वहां हम सांकेतिक पूजन करते हुए आज की रात्रि, दशमी की रात्रि जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और चतुर्दशी, इस बार थोड़ा सा भिन्नता है तिथियों में, तो सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं, लेकिन इस वर्ष दो पड़ाव होंगे, दो रात्रि का पड़ाव होगा। 26 और 27 की रात्रि हम रुकेंगे पंचतरणी में। और 28 तारीख प्रातःकाल, जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है उसी दिन, तो वहाँ पर पवित्र छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे, जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु का चक्र से, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर छड़ी मुबारक को वहाँ स्थापित किया जाएगा, वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा। पूजन अर्चन करने के पश्चात हम रात्रि पड़ाव फिर पंचतरणी में करेंगे 28 की रात्रि। 29 तारीख प्रातःकाल हम पंचतरणी से चलकर शेषनाग, पंचतरणी होते हुए चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव करेंगे पहलगाँव में। और 30 तारीख को लिद्दर नदी के किनारे पूजन विसर्जन और महात्माओं का खोज, और उसके साथ ही वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न होगी, पूर्ण होगी।
1: इस तरह अगर हम
2: सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कहना चाहूँगा, इस बार अगर हम यात्रा का जो पैटर्न देखें, तो पहले 10 या 12 दिन में समाचार था कि 3 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिए, उसके बाद वर्षा की बाधाएं आने को और दूसरी बाधाएं, तो ये यात्रा 19 जुलाई के बाद तो पहलगाम से निरस्ती कर दी गई, उसके बाद वो प्रारंभ भी नहीं हुई। अलबत्ता बालटाल से ये यात्रा बीच बीच में रुक रुक कर चलती रही और 9 अगस्त से आगे वो यात्रा उस तरफ से भी बंद कर दी गई। तो जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कुदरत और देव कृपा से, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, 2012 में एक ऐसी अद्भुत यात्रा थी कि 39 दिन की यात्रा थी। जब से 2004 से ये यात्रा एक्सटेंड होनी शुरू हुई है, तब से लेकर वो आज तक की सबसे छोटी यात्रा थी, 39 दिन की, 39 दिन की यात्रा थी, और 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, जो आज तक रिकॉर्ड है। और सबसे जो मैं बात आपकी, जो आप बात कह रहे हैं, वो आपको उसका निराकरण करूंगा, आपकी शंका का। 96 आखिरी साल था 1996, जब मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके भगवान शिव, जो कि वहाँ हिमलिंग रूप में विद्यमान रहते हैं, उनके दर्शन किए। और उसके पश्चात 16 वर्ष के बाद 2012 में, बावजूद इसके कि 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, मैंने भगवान का स्वरूप देखा। तो वहां दर्शन 39 दिन की यात्रा 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, उसके बावजूद भी वहां पर भगवान का स्वरूप मौजूद था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कुदरत की जो जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और अगर वो साइंटिफिक पहलू से देखें वो अपना उनका विश्लेषण है। लेकिन मैं, कोई कहता है जी ग्लोबल वार्मिंग, कोई कहता है जी वहाँ लंगर लगे हुए इतने गुफा के नीचे, कोई कहता है जी फ्लैश, एक वर्ष ऐसा था मोबाइल को अब लेके नहीं जाने देते, फ्लैश से भी मना कर दिया गया। तो ये अनेक कारण हो सकते हैं ये भी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये देव कृपा है, वो जब उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। और कभी कभी ऐसा हुआ 1996 में बर्फबारी हुई, अलग अलग उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। हम कभी कभी वो पाक और साफ जगह है, जैसे आप लोगों में कश्मीर में कहते हैं कि ये ज्यारत गर्म है, तो वो स्थान भी चार्ज्ड है पूरा। आप जाएं अगर भाव के साथ, वो पूरी जो गुफा है वो उस एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन आप रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, ग्राहकता होनी चाहिए, आप उसको महसूस करें। जी वेलकम।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे थे महंत दीपेंद्र गिरी जी की बात, जो उन्होंने छड़ी मुबारक की रस्मों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पूजा अर्चनाओं के बाद, अभिषेक के बाद जो है श्रावण शुक्ल पक्ष की अमावस्या को, यानी कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन जो है आज जो है इस छड़ी मुबारक की शुरुआत जो है उस यात्रा की, पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई श्रीनगर से पहलगाम की। और उन्होंने कहा कि आज यानी 22 और 23 अगस्त को पड़ने वाली एकादशी, और आज जो है पहलगाम में वो इसका विश्राम होगा छड़ी मुबारक का, और फिर 24 अगस्त की रात चंदनवाड़ी में रुकेंगे, और 25 अगस्त को शेषनाग में। और इस साल तारीखों में थोड़ा सा बदलाव होने के कारण जो है आमतौर पर एक रात के बजाय दो रात यानी 26 और

27 अगस्त पंचधर्मी में विश्राम होगा। महंत दीपिंदर गिरी जी ने ये भी कहा कि पूर्णिमा के दिन जो इस साल 28 अगस्त को है, छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में ले जाया जाएगा जहां भगवान शिव जी आज भी बर्फ के लिंगम के रूप में विराजमान है। और वैदिक मंत्रों के साथ पारंपरिक पूजा हुई और आगे भी जो है इन जो जो पड़ाव आएगा वहाँ पर जो है पारंपरिक पूजा अर्चनाएँ होंगी और उस पूजा के बाद 28 अगस्त की रात को वापस पंचतरणी में जो है इस छड़ी मुबारक का विश्राम होगा और 29 अगस्त की रात को सुबह जल्दी यात्रा शुरू होगी और पहलगाम में रात का पड़ाव जो है रहेगा और 30 अगस्त की सुबह लिदर नदी के किनारे पूजा अर्चनाओं के बाद जो है विसर्जन होगा और संतों के लिए जो है बोझ भी होगा और इसी के साथ भगवान शिव जी कि ये यात्रा जो है यानी कि अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक की वार्षिक तीर्थ यात्रा जो है संपन्न होगी।

0: मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है, ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टर्डम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India has raised with Somalian authorities the issue of hijacking of 2 foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate

0: श्रोताओं, आपको बता दें कि महंत दीपेंद्र गिरी जी जो है तीर्थ यात्रा के मुख्य पड़ाव के लिए निकल चुके हैं और निकलने से ठीक पहले उन्होंने इस पवित्र यात्रा के बारे में जो बात की है वो बात आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और हम महादेव ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा से शिव और शक्ति स्वरूप ने शटिकाओं जो प्रचलित नाम से छड़ी मुबारक है उसको लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो रात्रि पड़ाव हुआ करते थे पामपुर पिंपहाड़ा गौतम नाग होते हुए अनंतनाग रात्रि पड़ाव होता था, उसके पश्चात मारतंड के बाद अश्वकाम के बाद पहलगाम। तो इन स्थानों पर पहलगाम से पहले आने वाले पड़ाव जो रात्रि हुआ करते थे वहाँ हम सांकेतिक पूजन करते हुए आज की रात्रि दशमी की रात्रि जो 22 अगस्त है 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और चतुर्दशी इस बार थोड़ा सा भिन्नता है तिथियों में, तो सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं लेकिन इस वर्ष दो पड़ाव होंगे, दो रात्रि का पड़ाव होगा। 26 और 27 की रात्रि हम रुकेंगे पंचतरणी।

0: और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है उस दिन, तो वहाँ पर पवित्र छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु का चक्र से, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर छड़ी मुबारक को वहाँ स्थापित किया जाएगा, वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा। पूजन अर्चन करने के पश्चात हम रात्रि पड़ाव फिर पंचतरणी में करेंगे। 28 की रात्रि 29 तारीख प्रातःकाल हम पंचतरणी से चलकर शेषनाग पंचतरणी होते हुए चंद्रवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव करेंगे पहलगाम में, और 30 तारीख को निद्दर नदी के किनारे पूजन विसर्जन और महात्माओं का भोज, और उसके साथ ही वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न होगी पूर्ण।
1: जिस इस साल अगर हम देखें शिवलिंग का जो आकार था कुछ ही दिनों के बाद ही वो लुप्त हो गया
0: जी,
1: तो क्या कारण समझते हैं और क्या करने की जरूरत है नेक्स्ट ईयर?
0: मैं सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कहना चाहूँगा, इस बार अगर हम यात्रा का जो पैटर्न देखें तो पहले 10 या 12 दिन में समाचार था कि 3 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए, उसके बाद वर्षा की बाधाएं, अनेकों और दूसरी बाधाएं, तो ये यात्रा 19 जुलाई के बाद तो पहलगाम से निरस्ती कर दी गई, उसके बाद वो प्रारंभ भी नहीं हुई। अलबत्ता बालटाल से ये यात्रा बीच बीच में रुक रुक कर चलती रही और 9 अगस्त से आगे वो यात्रा उस तरफ से भी बंद कर दी गई। तो जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि ये कुदरत और देव कृपा से, मैं आपको स्मरण दिलाऊं 2012 में एक ऐसी अद्भुत यात्रा थी कि 39 दिन की यात्रा थी, जब से 2004 से ये यात्रा एक्सटेंड होनी शुरू हुई है तब से लेकर वो आज तक की सबसे छोटी यात्रा थी 39 डेज की, 39 दिन की यात्रा थी और 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए जो आज तक रिकॉर्ड है। और सबसे जो मैं बात आपकी जो आप बात कह रहे हैं वो आपको उसका निराकरण करूंगा आपकी शंका का, 96 आखिरी साल था 1996 जब मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके भगवान शिव जो कि वहाँ हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं उनके दर्शन किए, और उसके पश्चात 16 वर्ष के बाद 2012 में बावजूद इसके कि 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए मैंने भगवान का स्वरूप देखा। तो वहाँ दर्शन 39 दिन की यात्रा 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए उसके बावजूद भी वहाँ पर भगवान का स्वरूप मौजूद था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुदरत की जो जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और अगर वो साइंटिफिक पहलू से देखें वो अपना उनका विश्लेषण है, लेकिन मैं कोई कहता है जी ग्लोबल वार्मिंग, कोई कहता है जी वहाँ लंगर लगे हुए हैं इतने गुफा के नीचे, कोई कहता है जी एक वर्ष ऐसा था मोबाइल को अब लेके नहीं जाने देते, फ्लैश से भी होना करती है क्या, तो ये अनेक कारण हो सकते हैं ये भी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये देव कृपा है, वो जब उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। और कभी कभी ऐसा हुआ 1996 में बर्फबारी होती, अलग अलग उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, हम कभी कभी वो पाक और साफ जगह है, जैसे आप लोगों में कश्मीर में कहते हैं कि ये ज्यारत गर्म है, तो वो स्थान भी चार्ज्ड है पूरा, आप जाए अगर भाव के साथ तो वो पूरी जो गुफा है वो उस एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन आप रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, ग्राहकता होनी चाहिए, आप उसको महसूस कर सकते हैं।

श्रोता बने हुए आप और श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और आपको बता दें कि इस साल जो है कि हम ये कहें कि 8 अगस्त से अमरनाथ जी यात्रा जो है रुकी हुई है, और इस साल की 57 दिनों की अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी, और यात्रा के दौरान जो है हज़ारों लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के बाबा बर्फानी के दर्शन किए। हालांकि ख़राब मौसम की वजह से जो है 8 अगस्त से यात्रा जो है रोकी हुई है, और बारिश से ख़राब हुए मार्ग जो है उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते बंद कर दिए गए। यात्रा रुकी होने के बावजूद भी महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में पारंपरिक छड़ी मुबारक का जत्था जो है आज यानी 22 अगस्त को श्रीनगर से पहलगाम होते हुए पवित्र गुफा तक जो है ले जाया जा रहा है, और आखिरी रस्मों के बाद जो है छड़ी मुबारक वापस लौटेगी। 28 अगस्त को अमरनाथ जी गुफा में आखिरी रस्में जो है पूरी होने के बाद छड़ी मुबारक अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेगी। जुलूस 28 अगस्त को पंचतरणी में रुकेगा और 29 अगस्त को पहलगाम पहुंचेगा। और आपको ये भी बता दें कि 30 अगस्त को रिदिर नदी के किनारे पूजा और विसर्जन किया जाएगा, पूजा अर्चनाएँ होंगी और फिर जाके विसर्जन किया जाएगा, जिसके बाद साधु संतों के लिए जो है भोज भी होगा। इन रस्मों के साथ सालाना छड़ी मुबारक जो है इसकी यात्रा पूरी होगी, जिसके बाद पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा मंदिर में वापस आएगी और अगले साल तक जो है वही रहेगी। और यहाँ पर अभी जो आपने बातचीत सुनी उसमें महंत दीपेंद्र गिरी जी ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि भविष्य में यात्रा की अवधि कम करने से और ज़्यादा श्रद्धालु जो है इसमें शामिल हो सकेंगे। उन्होंने आशा जताई कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा बेहतर रास्ते और सुविधाएं देने से आने वाले सालों में श्रद्धालुओं की संख्या जो है 9 या 10 लाख तक भी जो है बढ़ सकती है।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा के विशेष प्रसारण में हमारे संग, और अब से बस कुछ ही क्षणों में आपके साथ जुड़ जाएंगी हमारी साथी उद्घोषक पसमान।

विशेष प्रसारण श्यामा नाजी यात्रा 2026। आप समाप्त कर रहे FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। मैं आपकी उद्घोष का पजमान फेरोज अभी से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

विशेष प्रसारण श्याम अनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर

0: रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has raised the issue of 2 hijacked foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board with Somali authorities. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents off Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing yesterday, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners operating in volatile waters, reiterating New Delhi's commitment to prioritizing the welfare of its seafaring community. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed dose combinations FDCs containing chlorpheniramine mallet and phenylphrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry in a notification mandated a clear warning that these medicines shall not be used in children below 4 years of age and that safer alternatives are available. The government directed manufacturers to clearly display the warning, fixed dose combination shall not be used in two

विशेष प्रसारण श्यामा नाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। भारत ने सोमालिया के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती बहरी जहाजों को हाईजैक किए जाने के मामले को उठाया है, जिस पर 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी हैं। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मुल्क के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारत की खवातीन की डबल्स जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद आज दोपहर सेमीफाइनल में चीन की जोड़ी ली शेंगशू और टैनिंग का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने सोमालिया हुकाम के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती जहाजों को हाईजेक किए जाने के मामले को उठाया है, जिनमें 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। इन जहाजों को यमन और सोमालिया के साहिलों के नज़दीक अलग अलग वाकयात में मुसल्लह कज़ाकों ने हाईजेक किया था। 16 भारतीय मल्लाह MT सीबू में जबकि 6 भारतीय मल्लाह MT लुत्फ में सवार थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कीनिया में भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि सभी भारतीय मल्लाह महफूज बताए जाते हैं। कल वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने हफ्ते में 2 बार होने वाली मीडिया गुफ्तगू के दौरान एक सवाल के जवाब में उन भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज से मुतालिक तशवीश के बारे में भी जानकारी दी जो ऐसे समंदरी इलाकों में काम करते हैं जहां शिद्दत से लहरें उठती हैं। उन्होंने मल्लाहों की बरादरी के तहफ्फुज और उनकी फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह देने के भारत के आज़म को दोहराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनकी हुकूमत के लिए काज़म और पुख्ता यकीन का मामला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम दोस्त, तरक्की पसंद और मुल्क की तरक्की के लिए हैं।

0: शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने इस्लाहात के लिए एक वाज़ह रोड मैप तैयार किया है, जिसमें बुनियादी तवज्जो हुक्मरानी के निज़ाम में इस्लाहात पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर अगले सिलसिले की इस्लाहात कर रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है, और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरमाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी हैं। वजारत सेहत ने एक नोटिफिकेशन में लाजमी करार दिया है कि मस्कूरा अद्वियात पर वाज़ह इंतबाह दर्ज किया जाए कि उन्हें 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हरगिज इस्तेमाल न किया जाए। यह इकदाम कम उम्र बच्चों की सेहत और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की सम्त एक अहम कदम है। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को हिदायत दी है कि वो मस्कूरा दवाओं के लेबल, पैकेज के अंदर मौजूद मालूमात और तशहीरी मवाद पर वाजह तौर पर यह वार्निंग दर्ज करें कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। हुकूमत ने कहा है कि इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खतरात पैदा कर सकता है, जबकि इसके मुकाबले में ज्यादा महफूज मुतबादिल अद्वियात दस्तियाब हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग और ब्रिक्स के खेलों के उजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग आज होगी, जबकि खेलों के उजरा की मीटिंग कल होगी। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजारत के मुताबिक नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग में तालीम, हुनरमंदी के फरोग, कारोबार, खुशहाली और पायदार तरक्की पर तबादले ख्याल के साथ नौजवानों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाने में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स मुल्कों के वजरा और आला सतह के मंदूबीन के साथ आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब वाक़ तारीखी थोटला कोंडा बुद्ध मत विरसे का दौरा किया। मंदूबीन ने बुद्ध मत के कदीम आसार और बाकियात देखे, जिनमें महास्तूप, ध्यान मराकज, कुएं और बावर्ची खाना के इलाके शामिल हैं। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत थोटला कोंडा में एक पौधा भी लगाया। मरकजी वजीर ने थोटला कोंडा के शानदार बुद्ध मत विरसे की तारीफ की और कहा कि भारत का बुद्ध मत का विरसा पूरी दुनिया के लिए अहम है। ब्रिक्स के खेलों के वजरा की मीटिंग कल विशाखापट्टनम में मुनाकिद होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में दिन में शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ज़ैली हिमालयी, मगरबी बंगाल, उत्तराखंड और भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। इस दौरान मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और मशरकी राजस्थान में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मध्य प्रदेश में गिरदाबी हवाएं चलने और हवा के कम दबाव का हल्का बनने के सबब सख्त मौसमी निज़ाम फ़ाल है। इसके नतीजे में पिछले 2 दिन से रियासत के शिमाली हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है और कई दरिया तुगयानी पर हैं। मौसमियात के महकमे ने आज सियोनी और बालाघाट में इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निज, दतिया, भिंड, निवारी, तिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह समेत 12 जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में कांग्रेस पर रिपब्लिकन कंट्रोल को बरकरार रखने की खातिर अपनी मुहिम के दौरान इंतखाबी जवाबित को मरकजी अहमियत देते हुए वोटरों के लिए तस्वीरी शनाख्त और शहरियत का सबूत लाजमी करार दिए जाने का अपना मुतालबा दोहराया है। सदर ट्रंप ने आज जनूबी कैरोलिना के मर्टल बीच पर एक रिपब्लिकन रैली के दौरान सेव अमेरिका एक्ट को मंजूर किए जाने की अपील की। सदर ट्रंप ने कहा है कि इस कानून के तहत हर वोटर को अपनी तस्वीर वाली शनाख्त पेश करना होगी और इस बात की तस्दीक करना होगी कि वो अमरीकी शहरी हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इंतजामिया ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी हासिल कर ली थी, अगरचे उन्होंने कहा कि यह कानून इन शराइत को मुस्तकिल बनाने के लिए जरूरी था। BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल में आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चीन की ली शेंशू और टैन निंग की जोड़ी से मुकाबला करेगी। भारतीय जोड़ी कल चीन के चौथे मकाम की जोड़ी जेई फैन और जैंग शूजियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हुई है। इस जीत के साथ ही ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी ने भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी आलमी चैंपियनशिप में तमगा हासिल करने वाले भारतीय खवातीन की डबल्स की ऐसी दूसरी जोड़ी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की पहली भारतीय जोड़ी थी जिसने 15 साल पहले लंदन में कांसे का तमगा जीता था। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने सोमालिया के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती बहरी जहाजों को हाईजैक किए जाने के मामले को उठाया है जिस पर 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी फरोख्त और तकसीम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारत की खवातीन की डबल्स की जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद आज सहपहर सेमीफाइनल में चीन की जोड़ी ली शेंगशू और टैन निंग का सामना करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा with the midday news. The headlines. Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS Youth Ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of 2 foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisa Jolly and Gayatri Gopichand to be up against China's Liu Shengshu and Tham Ning in semi-finals this afternoon. And now the news in detail. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed dose combinations, FDCs, containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry, in a notification, mandated a clear warning that these medicines shall not be used in children below 4 years of age in a significant step to safeguard the health and safety of young children. The government directed manufacturers to clearly display the warning "Fixed dose combination shall not be used in children below 4 years of age" on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said that the use of such combinations may pose risks to children below 4 years of age and that safer alternatives are available. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, along with ministers and senior delegates from the BRICS countries, today visited the historic Thotlakonda Buddhist Heritage Site near Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. The delegates visited the ancient Buddhist remains, including the Mahastup, meditation centers, wells, and kitchen areas. Dr. Mandavi also planted a sapling at Thottalgunda as part of the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. The visit is part of the programs being held in Visakhapatnam under India's BRICS Presidency 2026. The BRICS Youth Ministers Meeting will be held in Visakhapatnam this evening. The meeting, chaired by Dr. Mansukh Mandavia, will discuss ways to strengthen cooperation in youth development and empowerment with a focus on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. The BRICS Sports Ministers Meeting will be held in Visakhapatnam tomorrow, with discussions expected to focus on strengthening cooperation in sports. Union Home Minister Amit Shah holds an important meeting in allied Gorkha leaders today at Sukna in Darjeeling, West Bengal. Chief Minister Suvendu Adhikari, Chief Secretary Manoj Agarwal, Hill Affairs State Minister Bishal Lama, Gorkha leaders Bimal Gurung, Maan Ghising, Lok Sabha MP Raju Bist, along with other four Gorkha MLAs were present in the meeting. Later today, Union Home Minister will chair a high-level Siliguri Corridor meeting with top BSF, SSB, IB, police and other state and central officials. The BJP today passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In a social media post, BJP President Nitin Naveen said that the party strongly condemned and unequivocally opposed the Congress Working Committee's decision to sing only first two stanzas of Vande Mataram in the party programs. He added that the BJP is resolved to reject every attempt to subordinate the national song to communal pressure, political appeasement or narrow vote bank considerations. Prime Minister Narendra Modi said that India has fundamentally changed its approach from punishing production during the license raj to rewarding it with the government's production-linked incentive PLI scheme. Addressing the Economic Times World Leaders Forum 2026 yesterday, Mr. Modi juxtaposed the destructive production-linked punishment model with the current PLI scheme, demonstrating how a reform in thinking fundamentally changes economic outcomes. He also presented the success of the PLI scheme, which alone has attracted 2.5 lakh crore rupees in actual investments, driven 22 lakh crore rupees in production and sales, generated 15 lakh crore rupees in exports and created over 14 lakh jobs.
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है और आज पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है, 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
3: Addressing widespread global concerns regarding growth, resource weaponization and mounting distrust, the Prime Minister highlighted that the international community increasingly views India as a bright spot for growth and hope.
1: साथियों, दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
3: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज। For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has raised with Somalian authorities the issue of the hijacking of two foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents off Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. Yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners operating in volatile waters, reiterating

0: So far, 13 people have lost their lives in the current flood. Meanwhile, the IMD has forecast very heavy rainfall in Odisha from today till 26th of this month, posing a fresh challenge to already waterlogged areas. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In the BWF Badminton World Championships, India's women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will take center stage in the semi-finals today. The Indian duo will face top seeds Liu Sheng Shu and Tan Ning of China at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. More from our correspondent.
2: The Indian duo stormed into the semi-finals yesterday, defeating fourth seeds Jiayi Fan and Zhang Shuxian of China 16-21, 21-15 and 21-13. With this victory, Teresa and Gayatri have assured India of a coveted medal at the prestigious championship. The duo also became only the second Indian women's doubles pair to win a medal at the World Championships. Jwala Gatta and Ashwini Ponappa were the first Indian combination to achieve this feat when they clinched the bronze in London 15 years ago. Earlier in the day, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Janki Reddy and Chirag Shetty crashed out of the tournament after losing to China's Liang Weikeng and Wang Chang. The Indian duo went down to the fourth-seeded Chinese pair in straight games 18-21, 9-21 in the quarterfinals. With Vishnu P.S., Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS youth ministers meeting at Visakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of two foreign flight commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand to be up against China's Liu Sheng Shu and Tan Ning in semi-finals this afternoon. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किया।

0: किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम

0: जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर है और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध

0: क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो ईपीएफ के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। विशेष प्रसारण श्यामाना जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। आप समाप्त कर FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोता, आपको बता दें कि छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा जो श्रीनगर से निकल चुकी है, हमारे संवाददाता के अनुसार अभी वो सुरक्षित तौर पर बिज बिहारा पहुंच चुकी है। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: साई। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता एस तारिक साहब अनंतनाग से। जी तारिक साहब।
1: जी बिल्कुल, मिला जुला मौसम के बीच आज अयूब सभा इस्लामी अखाड़ा श्रीनगर से साधु संतों और भक्तों के साथ फड़ी मुबारक के कस्टोडियन श्री महंत दिपंदरा गिरी की क्यादत में फड़ी मुबारक सख्त हिफाजत इंतजाम के दरमियान पहलगाम की जानब रवाना हुई। तो फड़ी मुबारक का ये पावन जत्था पहले पापौर, अवंतीपोरा और बिजबारा में, बिजबारा में ये बता दूं कि बिजबारा में सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला इंतजामिया थे उन्होंने उनका वहाँ वेलकम किया, उनको गुलदस्ते दिए और लोगों ने भी बड़ी बढ़ चढ़ कर वहाँ हिस्सा लिया। वहाँ उन्होंने हल्का सा कुछ धार्मिक महामंत्रों का योग किया और अंतनाग से गुजरता हुआ फिर वो मशहूर मंदिर मटन पहुंच गए जहाँ सूर्य मंदिर जिसका नाम है। तो सूर्य मंदिर मटन में खुशी पूजा अर्चना की गई। वहाँ पूरे हिंदू समाज, पंडित समाज के लोग थे, उनके साथ मुस्लिम समुदाय, सिख, सभी लोगों ने इस पवित्र छड़ी मुबारक का बहुत इस्तेमाल किया। बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा थे, पूरे इलाके में एक जिसम जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। छड़ी मुबारक की यात्रा के पेश नजर जिला इंतजामिया ने सख्त हिफाजत इंतजाम किए थे। मुख्तलिफ मकाम पर हिफाजती दस्तों के जवान और पुलिस अधिकार तैनात थे, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से ये तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल किए गए थे। अभी मैं मटन में ही हूँ। अभी मैं दिबंदरागिरी की क्यादत में अभी जो छड़ी मुबारक की का जो जत्था है अभी वो मटन में ही मौजूद है, वो भोजन कर रहे हैं। भोजन के तुरंत बाद वो पहलगाम की ओर अपना रक्ति सफर बांध लेंगे। पहलगाम पहुंचने के बाद गौरी शंकर मंदिर में दो दिन तक पूजा अर्चना रहेगी, यानी 22 और 23 आज और कल के रात ये वही गुजारेंगे पहलगाम में। इसके बाद 24 अगस्त को चंदनवारी, 25 अगस्त को शिशनाग, जबकि 24 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रात का पड़ाव होगा। आखिरकार 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के पावन दिन श्री मुबारक श्री अमरनाथ जी की पावन गुफा पहुंचेगी, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन, पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक महामंत्रों उच्चारण के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का जो रिवायती समापन होगा। छड़ी मुबारक का ये जो पावन परंपरा सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही नहीं बल्कि कश्मीर के मुकामी मुस्लिम समाज के लिए भी अपनी एक विशेष सांस्कृतिक और तारीखी अहमियत रखता है। मुकामी लोग सदियों से छड़ी मुबारक की रवानगी को सर्दी के मौसम की आमद की एक नवीन समझते हैं। छड़ी मुबारक को श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक गहरा धार्मिक और तारीखी संबंध भी है। यही वजह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की परंपरा का आगाज और संपावन छड़ी मुबारक के साथ ही होता है। तो परंपरा के मुताबिक एक साधु ने अपने शिष्यों और भक्तों को श्री अमरनाथ जी गुफा की जानिब जाने और वहाँ भगवान शिव की पावन शिवलिंग का दर्शन करने की हिदायत दी थी, जबकि इसके जिसे यात्रा रवाना हुए तो मार्ग में राक्षसों ने उन्हें परेशान किया और आगे बढ़ने से रोक दिया। ये शिष्य वापस ब्रिंगीशा नामे शख्स के पास पहुंचे जो एक धार्मिक शख्स था और अपनी परेशानी बयान की। ब्रिंगीशा ने भगवान शिव की प्रार्थना की, माना जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें पवन तम्र अता किया जिसे बाद में छड़ी मुबारक का नाम दिया गया, जिसे शिव और शक्ति के प्रतीक समझा जाता है। छड़ी मुबारक को भगवान शिव और शक्ति के इस निशानी को सभी धर्म के लोग मानते हैं। तब से ही भगवान भक्तों का एक बड़ा जुट और इस पावन छड़ी के साथ श्री अमरनाथ गुफा की जानिब यात्रा करता है। श्रोताओं, 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा के दौरान आपको मालूम ही है तकरीबन 4,80,000 लोगों ने श्री अमरनाथ जी गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। मजहबी आस्था के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतकार रहस्य बताने के लिए पहलगाम के इन्हीं ऊंची पर्वतों और गिलेश्वरों के दरमियान वाघा पवन गुफा का इंतखाब किया था। तो इसी जज्बे के तहत ज्यादातर लोग इसी रास्ते से बाबा बर्फानी की गुफा जो पहुंच जाते हैं और वहां दर्शन के लिए। जी
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: बहुत शुक्रिया।
0: श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता एस तारिक साहब अनंतनाग से।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज से छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा शुरू हो रही है जो पहलगाम की ओर प्रस्थान करेगी। इस छड़ी मुबारक के हवाले से महंत जी क्या कुछ साझा करना चाहेंगे, आइए सुनते हैं।

0: शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और हम महादेव ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा से शिव और शक्ति स्वरूप ने शटिकाओं जो प्रचलित नाम से छड़ी मुबारक है उसको लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो रात्रि पड़ाव हुआ करते थे पामपुर पहाड़ा गौतमनाग होते हुए अनंतनाग रात्रि पड़ाव होता था, उसके पश्चात मारतंड, मारतंड के बाद अश्वकाम, अश्वकाम के बाद पहलगाम। तो इन स्थानों पर पहलगाम से पहले आने वाले पड़ाव जो रात्रि हुआ करते थे वहाँ हम सांकेतिक पूजन करते हुए आज की रात्रि दशमी की रात्रि जो 22 अगस्त है 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और चतुर्दशी इस बार थोड़ा सा भिन्नता है तिथियों में, तो सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं लेकिन इस वर्ष दो पड़ाव होंगे, दो रात्रि का पड़ाव होगा। 26 और 27 की रात्रि हम रुकेंगे पंचतरणी में और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है उस दिन, तो वहाँ पर पवित्र छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु का चक्र से, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा, वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा। पूजन अर्चन करने के पश्चात हम रात्रि पड़ाव फिर पंचतरणी में करेंगे 28 की रात्रि। 29 तारीख प्रातःकाल हम पंचतरणी से चलकर शेषनाग पंचतरणी होते हुए चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव करेंगे पहलगाम में। और 30 तारीख को लिद्दर नदी के किनारे पूजन विसर्जन और महात्माओं का भोज और उसके साथ ही वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न होगी पूर्ण।
1: जिस इस साल अगर हम देखें शिवलिंग का जो आकार था कुछ ही दिनों के बाद ही वो लुप्त हो गया
0: जी,
1: तो क्या कारण समझते हैं और क्या करने की जरूरत है नेक्स्ट ईयर?
0: मैं सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कहना चाहूँगा, इस बार अगर हम यात्रा का जो पैटर्न देखें तो पहले 10 या 12 दिन में समाचार था कि 3 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए, उसके बाद वर्षा की बाधाएं आने को और दूसरी बाधाएं, तो ये यात्रा 19 जुलाई के बाद तो पहलगाम से निरस्ती कर दी गई, उसके बाद वो प्रारंभ भी नहीं हुई। अलबत्ता बालटाल से ये यात्रा बीच बीच में रुक रुक कर चलती रही और 9 अगस्त से आगे वो यात्रा उस तरफ से भी बंद कर दी गई। तो जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि ये कुदरत और देव कृपा से, मैं आपको स्मरण दिलाऊं 2012 में एक ऐसी अद्भुत यात्रा थी कि 39 दिन की यात्रा थी, जब से 2004 से ये यात्रा एक्सटेंड होनी शुरू हुई है तब से लेकर वो आज तक की सबसे छोटी यात्रा थी 39 डेज की, 39 दिन की यात्रा थी और 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए जो आज तक रिकॉर्ड है। और सबसे जो मैं बात आपकी जो आप बात कह रहे हैं वो आपको उसका निराकरण करूंगा आपकी शंका का, 96 आखिरी साल था 1996 जब मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके भगवान शिव जो कि वहाँ हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं उनके दर्शन किए। और उसके पश्चात 16 वर्ष के बाद 2012 में बावजूद इसके कि 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए मैंने भगवान का स्वरूप देखा। तो वहाँ दर्शन 39 दिन की यात्रा 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए उसके बावजूद भी वहाँ पर भगवान का स्वरूप मौजूद था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुदरत की जो जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है और अगर वो साइंटिफिक पहलू से देखें वो अपना उनका विश्लेषण है, लेकिन मैं कोई कहता है जी ग्लोबल वार्मिंग, कोई कहता है जी वहाँ लंगर लगे हुए हैं इतने गुफा के नीचे, कोई कहता है जी एक वर्ष ऐसा था मोबाइल को अब लेके नहीं जाने देते, फ्लैश से भी मना कर दिया गया, तो ये अनेक कारण हो सकते हैं ये भी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये देव कृपा है, वो जब उनकी इच्छा होगी वो करेंगे और कब

कभी ऐसा हुआ 1996 में बर्फबारी हुई, अलग अलग उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। हम कभी कभी वो पाक और साफ जगह है, जैसे आप लोगों में कश्मीर में कहते हैं कि ये ज्यारत गर्म है, तो वो स्थान भी चार्ज्ड है पूरा। आप जाए अगर भाव के साथ तो वो पूरी जो गुफा है वो उस एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन आप रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, ग्राहकता होनी चाहिए, आप उसको महसूस कर सकते हैं।

विशेष प्रसारण श्यामा नाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा शुरू हुई है और पहलगाम की ओर प्रस्थान करेगी। हमारी यही प्रार्थना है कि छड़ी मुबारक की जो ये यात्रा है मंगलमय, सुरक्षित और सुखद रहे। सफ़र के दौरान सभी नियमों का पालन करें, प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का सम्मान करें। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखें, प्रकृति का संरक्षण करें और अन्य यात्रियों के प्रति सहयोग और सद्भावना का व्यवहार रखें। किसी भी आपातकाल या असुविधा की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026। आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आए सुनते हैं बालतल बेस के

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: कहा बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय,
0: नमः पार्वती।

0: Sergio.
1: श्रोताओं, बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथी इंजीनियर्स थे इरशाद अहमद नायको, फारूक अहमद डार और मोहम्मद सलीम। मैं आपकी उद्घोष का पजमान फेरोज़ और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल 6:53 पर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

हे जगदम्ब, मैं अपनी सेवा करे करी दी। हे देवी, अपने कोई अधिक धन सामग्री के कहीं अर्पियो नहीं, तो पण मुझ ऊपर आप अनुपम स्नेह धरावो छो। एनु कारण ए छे के संसार मा कुपुत्र पैदा थई शके छे, पण माता क्यारे कुमाता बनती नथी।

अर्थात एक आलरात्रि श्याम कृष्ण वर्णवाळा कृष जेमा रक्तवाहिनी नसो देखाई रही छे एवा वृद्ध देखाता तो फैलायेल एवा वितत आकृति वाला जंगल जेवु जमनु मस्तक छे कि जे अग्नि ज्वालाओं थी लपेटायेलू होय एम लागे छे। अति दीर्घा बहु लांबा अने भयंकर मुख धरावता ए कालरात्रि ए जाने आकाश ने मापवा तैयार न थया होय एवा एमने अमे प्रणाम करीए।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,